हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही सर? नहीं आ रही? अरे हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ओके, डीजे पोर्ट देखिए सर। टाइम मिला लेते हैं सर। सुबह के 5:20, 13:14, 15 सेकंड हुए हैं। कंप्यूटर नंबर 2 टेस्टिंग।

भोपाल टेस्टिंग करते हैं सब्जी।